0: उम्मीद करता हूं कि ये संगीत आपको बहुत पसंद आया होगा और आज का शो बहुत पसंद आया होगा आप सभी को। तो चलिए मिलते हैं अगले सप्ताह एक बार फिर से सुरों के सफर में नए संगीतकार के साथ और नई कहानियों के साथ। धन्यवाद
1: सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस शो परिचय में आना चाहते हैं तो मुझे 021-626-542 पर पहुंच सकते हैं। आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। आप परिचय को हर थर्सडे 5:30 PM से सुन सकते हैं और इस पॉडकास्ट को दोबारा सुनने के लिए NPR के वेबसाइट पर जा सकते हैं जो है www.npr.nz/show/परिचय।
2: Community notices on NPR.
3: The Fielding Health Shuttle Service assists clients with transport to medical and health appointments in Fielding and Palmerston North. There is no charge or fee for using the service, however, Koha is appreciated to assist in covering the operational costs. The Health Shuttle Service runs a door-to-door service from Monday to Friday, excluding public holidays. Clients can make bookings individually, or service providers can arrange transport on behalf of their clients. To make a booking, please call 0800 323 565.
2: Community notices are a free service that anyone can use. Fill out the online form at npr.nz or call 06 357 9340.
4: The NPR Hubs project brings the studio to you. Utilizing community spaces, NPR takes care of the travel and time barriers affecting people in rural Manawatu, limiting their access media and the production of content that reflects them. Does your community want a hub? Find out more at npr.nz and click on initiatives or call 06-357-9340.
5: Well, if sports is your thing, then tune on in to the Manawatu's People Radio for the fortnightly sports show with producer Aaron and Brian. What do we normally get up to, Brian?
6: We usually talk about the Manawatu rugby draws and results, and like the central football and the Manawatu netball.
7: The Sports Guide on Manawatu People's Radio. Fridays at 3 PM, Sundays at 12:30.
8: Here at NewsHour from the BBC, we gather the most interesting stories from around the world.
9: Hundreds of thousands of civilians caught in the crossfire there.
10: It's going to be very challenging to address this crisis.
8: And with the help of interviews and analysis from our guests, we discover what's really behind them.
11: The entire place is a police state.
8: For the broader perspective, NewsHour from the BBC.
7: The BBC World Service. Midnight till 8 AM every day on NPR.
1: Namaste, निर्मला नंद और आपका स्वागत करती हूं अपने शो परिचय में। परिचय का लक्ष्य यही है कि हम आपका परिचय उन खास लोगों से कराएं जो फिजी या भारत से आकर न्यूजीलैंड में बसे हुए हैं और बहुत सफलता या कामयाबी हासिल किए हुए हैं। इसके साथ साथ हम कुछ दिलचस्प विषयों पर भी बातचीत करेंगे और शो को लाजवाब गीत संगीत से भी सजाएंगे।
0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मैक्स चोपड़ा और स्वागत करता हूं एक बार आपका फिर से आज के शो में जिसका नाम है सुरों का सफर। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के मशहूर संगीतकार और गायक के की, के जिनका नाम कृष्ण

कुमार कुन्नत है। इनका जन्म 23 अगस्त 1968 में हुआ और इनका देहांत 31 मई 2022 में हुआ। ये बहुत ही जाने माने संगीतकार थे। इनको प्लेबैक सिंगिंग में ज्यादा मशहूर माना गया। केके ने अपने नाम पे इतने पुरस्कार लिए जैसे कि स्क्रीन अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स की नॉमिनेशंस 6 बार। केके बहुत ही प्रोलिफिक प्लेबैक सिंगर थे इंडिया के, जिन्होंने हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम भाषा में संगीत गाए। इन्होंने पूरे विश्व भर में अपना नाम कमाया और जाके बहुत जगह पे शो लगाए, और आज हम इनकी बात करेंगे। और साथ साथ में हम आज एक और फिर से आरजे कार्तिक की एक कहानी सुनेंगे, जिससे मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए पहला संगीत सुनते हैं केके की आवाज में, तुझे सोचता हूँ।

बहुत ही खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो चलिए बात करते हैं केके की आगे। केके जी ने अपना करियर सिंगिंग में शुरू किया एडवर्टाइजिंग जिंगल्स के साथ। तो ये उन्होंने अपना फिल्म डेब्यू सबसे पहले किया 1996 में, जिसका सॉन्ग का नाम था माचिस। उसके बाद केके रिलीज हिज डेब्यू एल्बम पल इन 1999। तो उसमें द सॉन्ग्स पल एंड यारों बहुत ही पॉपुलर हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ ये इसमें से एक गाना भी हम चलाएंगे जिसका नाम है यारों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने कभी ना कभी ये कहीं ना कहीं सुना ज़रूर होगा। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस सॉन्ग को जिसका नाम है यारों, और ये गाना मैं आप सभी को, अपने दोस्तों को डेडिकेट करता हूँ, और आप भी अपने दोस्तों को डेडिकेट कीजिए ये गाना, अपने यारों को, और उन्हें सुनने को बोलिए ये रेडियो शो MPR पे जो हमारा चल रहा है, ताकि वो भी जान सकें कि आप उनको मिस कर रहे हैं और आप उनको कितना प्यार करते हैं।

उम्मीद करता हूँ ये संगीत आपको बहुत पसंद आया होगा और इस संगीत ने भाई मुझे तो मेरे दोस्तों की मेरे यारों की याद दिलवा दी। उम्मीद करता हूँ आपको भी अपने कुछ दोस्त याद आए होंगे। ज़्यादातर ये संगीत जो स्कूल की ग्रेजुएशंस या कॉलेज की ग्रेजुएशंस होती थी उस पर बहुत मशहूर हुआ। उसके बाद इनको थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली के को इस गाने के बाद और काफ़ी उन लोग उनको जाने लग गए। फिर उनके बाद उनको अपने करियर का एक ब्रेक थ्रू सॉन्ग मिला जिसका नाम था तड़प तड़प के, जो कि मूवी हम दिल दे चुके सनम में था। आज भी ये संगीत काफ़ी जो इंडियन आइडल जैसे शो हैं म्यूज़िकल उस पर गाया जाता है और के को याद किया जाता है। और इस संगीत के लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग मेल में नॉमिनेशन मिला। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस संगीत को।

नंदिनी नंदिनी नंदिनी समीर चाह रहा है। बाबा नहीं माने, वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इतनी इजाजत दी है कि तुम उसे जाते वक्त सिर्फ एक नजर देख सको। उठो नंदिनी, उठो। समीर हमेशा के लिए जा रहा है, जाकर देखा उसे, फिर शायद जिंदगी में तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी।

बहुत ही फेमस हुआ था ये सॉन्ग, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। ये तो एक सैड सॉन्ग था, बट के ज़्यादातर अपने रोमांटिक गानों के लिए जाने गए। इस संगीत के बाद 2000s, अर्ली 2000s में के बहुत ही लोकप्रिय हुए और इन्होंने वेरियस लैंग्वेजेस में अपने गाने गाए। इनके काफी मशहूर गाने हैं जैसे कि कोई कहे कहता रहे फ्रॉम दिल चाहता है, ओ हमदम सोनियो रे फ्रॉम साथिया, डोला रे डोला फ्रॉम देवदास, क्या मुझे प्यार है वो लम्हे, तू ही मेरी शब है फ्रॉम गैंगस्टर, आंखों में तेरी फ्रॉम ओम शांति ओम, खुदा जाने फ्रॉम बचना ए हसीनो, जरा सा फ्रॉम जन्नत, सजदे फ्रॉम खट्टा मीठा, पिया आए ना फ्रॉम आशिकी टू, मत आजमारे फ्रॉम मर्डर थ्री, इंडिया वाले फ्रॉम हैप्पी न्यू ईयर, तू जो मिला फ्रॉम बजरंगी भाईजान। ये सभी संगीत इतने पॉपुलर हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने इन सभी गानों को कभी ना कभी एक ना एक बार तो जरूर सुना होगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक और संगीत सुनते हैं, तू ही मेरी शब है।

0: बेहतरीन संगीत। और धीरे धीरे मैं ये देख रहा हूँ कि अगेन हमेशा की तरह समय निकलता जा रहा है। हमने आरजे कार्तिक की कहानी तो सुनाई ही नहीं, तो चलिए अब सुनते हैं आरजे कार्तिक की ये एक मोटिवेशनल कहानी।
1: वो कहते हैं ना, अगर खुशी किसी दुकान में मिलती तो इस दुनिया में कोई इंसान दुखी नहीं होता, लेकिन खुशी आपके अंदर है, ढूंढने से आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए आपसे आरजे कार्तिक कहता है कि खुशी को महसूस कीजिए। एक बड़ी कमाल की कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार एक सेठ जी की दुकान पर एक आदमी नौकरी किया करता था, बड़ी मेहनत से काम करता था, लगन से काम करता था। सेठ जी बड़े खुश थे, वो आदमी बड़ा खुश था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन उस आदमी ने सेठ जी को बिना बताए छुट्टी कर ली, वो गायब हो गया। सेठ जी ने सोचा कि चक्कर क्या है, बताया क्यों नहीं, क्या वजह हो सकती है। सेठ जी ने खुद से सोचा कि शायद हो सकता है पैसों की कमी होगी, लड़का बड़ी मेहनत से काम करता है, तो तनख्वाह बढ़ाने का सोच लिया। अगले दिन जब वो आदमी दुकान पर आया तो सेठ जी ने कहा कि देखो भैया, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी है। अगले महीने की पहली तारीख को उस व्यक्ति को बढ़ा हुआ पैसा मिला, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सेठ जी को धन्यवाद नहीं कहा, ना खुश हुआ, अपना

0: करता रहा। सेठ जी ने सोचा कि पैसा बढ़ा दिया, मेहनत लगन से काम करेगा, बात आई गई होगी। कुछ महीनों के बाद में एक बार फिर से वो आदमी छुट्टी पर चला गया, आया नहीं। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया कि अजीब आदमी है, एक तो मैंने पैसा बढ़ाया, ना उसका धन्यवाद दिया, ना मुझे आकर के कुछ बताया, ना अपनी जिम्मेदारी समझी, आज फिर से छुट्टी कर गया। सेठ जी बड़े गुस्से में थे। अगले दिन जब वो आदमी काम करने के लिए आया तो उसे बुला करके कह दिया कि भैया तुम्हारा पैसा घटा दिया है, जो सैलरी तुम्हें पहले मिला करती थी वही तुम्हें मिलेगी। अगले महीने की पहली तारीख आई और सेठ जी ने घटी हुई तनख्वाह उसको दी। इस बार भी लड़के ने, उस आदमी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना वो खुश हुआ ना दुखी हुआ। सेठ जी ने उसको बुलाया और पूछा कि एक बात बताओ, जब तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई, जब तुम्हारे पैसे बढ़ाए तब तुम खुश नहीं हुए, अब जब घटा दिए तब भी तुम दुखी नहीं हो रहे, चक्कर क्या है? उस आदमी ने जो कहा ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा कि सेठ जी जब पहली बार नहीं आया था ना, उस दिन मेरे घर में मेरा बच्चा पैदा हुआ था और आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई थी, तो मुझे लगा कि ऊपर वाले ने मेरे बच्चे का हिस्सा मुझे दिया है, तो मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ। दूसरी बार जब नहीं आया था तब मेरी मां का देहांत हो गया था और तब मुझे लगा कि आपने जो तनख्वाह घटा दी है, तो मुझे लगा कि मेरी मां अपने हिस्से का अपने साथ ले गई, तो मैं उस घटे हुए पैसे के लिए परेशान क्यों हूं। यह बात सुनने के बाद सेठ जी ने उस आदमी को गले लगा लिया। यह छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हमारी जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं, कई बार बहुत अच्छा वक्त आता है, कई बार बहुत बुरा वक्त आता है। उस आदमी को देखिए, वो जब पैसा बढ़ा तो उछला नहीं, ना ज्यादा खुश हुआ, जब बुरा वक्त भी आया तो ज्यादा दुखी नहीं हुआ। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, सिकंदर वही होता है जो हर वक्त को पार करके आगे बढ़ जाए। इसीलिए आरजे कार्तिक आपसे कहता है, जिंदगी के दबाव में आना बंद कीजिए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
1: उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है भाई। तो चलिए बात करते हैं केके की आगे। केके की इलनेस और डेथ कैसे हुई। केके 31 मई 2022 को परफॉर्म कर रहे थे एक कॉन्सर्ट पे, वो एक कॉलेज फेस्टिवल था जिसका नाम था नजरुल मंचा इन साउथ कोलकाता। और कॉन्सर्ट के बाद जब वो अपने होटल में गए एस्प्लेनाड में, वहाँ पे उन्होंने ठीक महसूस नहीं किया और वहाँ पे होटल में ही उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। वो ज़मीन पे गिर गए और उनको रिवाइव करने की बहुत कोशिश की गई। होटल से उनको हॉस्पिटल में लेके जाया गया जहाँ पे उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया। तो वो सिर्फ 53 ईयर ओल्ड के थे, तो बहुत ही यंग एज में हमने एक अपना बहुत बढ़िया कलाकार खो दिया। तो चलिए आगे उनका संगीत एक आखिरी सुनते हैं और करते हैं अलविदा, और अगली बार मिलेंगे आप सभी को फिर से एक बार, एक शो लेके आएंगे आपके लिए और उम्मीद करेंगे आपको वो हमेशा की तरह बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद, मैं हूं आपका दोस्त मैक्स चोपड़ा और आप एंजॉय कीजिए ये आखिरी संगीत आज का।

0: सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस शो परिचय में आना चाहते हैं तो मुझे 021-626-542 पर पहुंच सकते हैं। आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। आप परिचय को हर थर्सडे 5:30 PM से सुन सकते हैं और इस पॉडकास्ट को दोबारा सुनने के लिए NPR के वेबसाइट पर जा सकते हैं जो है www.npr.nz/show/परिचय।
1: Learn new skills, connect with others, and share your story. Make an Access Radio program. Find out more at npr.nz.